0: गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9008213424 र 9855014175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला बिहानको ठिक 9 बज्यो।
5: चकुसान किसान
6: अ कम्प्लिट पाइपिङ।

0: इन्टरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9008213424 र 9855014175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला दिउँसोको ठिक एक बज्यो।

मौसम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। लुकी मेरा आसम अदाए ब्यूटीफुल, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है।

0: Dan-dan. Promotion letter.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: Wow.
0: Baby, Bangalore.
1: I hope you said no.
0: No? Main no kyun bolungi?
1: Huh? Mera kya hoga? As in, hamara kya hoga?
0: Baba, tumhare hamare ki baat nahi hai. Tumhe pata to hai ye promotion mujhe kitni mushkil se mil gaya. I have to go to Bangalore.
1: अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो फिर मुझे पूछने क्यों आई?
0: हेलो, मैं पूछने नहीं आई, मैं बताने आई. आई डोंट हैव टू आस्क यू एनीथिंग और मैं जा रही हूँ बैंगलोर. व्हाटएवर.
1: लिसन बेबी,
0: डोंट टॉक टू मी.

0: होटलमा बस्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्।
1: समय सम्झनुहोस् है, मग्यम चिसा पानी र काठमाडौँको लोसे महलमा ठिक 8 बजे।
2: होटल टाइटनिक, गंगबु बस पार्क, प्रोपाइटर रामचन्द्र महत। मोबाइल 98461680, 98235, 52773।

0: शुक्ला गंडकी एफएम 97.6
1: शुक्ला गंडकी टाइम चेक
2: यति बेला रातिको ठिक 8 बज्यो।